सनन सौदा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत साहब का पाठ सारे मिलके करिए अन गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी तो आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेद गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा नू बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

कारण सृष्टि उबारण मम्मट पारण जात कारण सृष्टि उबारण मम्मट पारण जात जग जग।

0: हर बिलोक पूरन पत पार, बनते पर्वत है पार ब्रह्म। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी वै संतरमा।
1: नानक
0: का पातशाह दिस से जाहरा, पौन पानी

सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पाई बैसंतर

बहुत प्राचीन मधुर अते प्रमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वाद्य स्वर धैवत अते संवादी ऋषभ है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ फटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्ना मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही को देव।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागन सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

And it is the most ugly thing. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਗੜ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਅਵਰ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਪੇਂਟ ਅਵਰ ਸੈਲਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਅਤੇ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਮਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੱਖਣ ਤੇਰੇ ਆ ਗੁਣ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਚਰਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਜਾਨ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਵਿਚੱਖਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੱਖਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚੱਖਣ ਅਤ ਗਰਬ ਹੈ ਮੋਹੇ ਫਾਕੀ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਿ ਗਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ਸੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ, ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੂਪ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਆਦਲ ਪਹਾਗ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲੀ ਗਰਬੈ ਮੁੱਖ ਗੋਵੈ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਚ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਭ ਵਿਧ ਖੋਈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ
तेरा जो पूजा स्थान बहुत खूबसूरत है, बेशक तेरा स्नान स्थान बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ये सारिया चीजा होने के बाद बेशक तू बहुत इंटेलिजेंटली कम्युनिकेट कर सकता है, फिर भी कहते हैं ये सारे का सारा व्यर्थ हो गया है क्योंकि लोभ सुवान ग्रीड कुत्ता तेरे अंदर बैठा है। सुवान यानी कुत्ता, लोभ है ग्रीड। कहते ग्रीड एक ऐसी चीज है जिसन कुत्ते दे नाल कंपेयर किया है, कहते तेरे अंदर ते एक कुत्ता रहा है, सारे तेरे गुण गल गए हैं, इना सुंदर रसोईया का, इना सुंदर बाथरूमा का, सुंदर पूजा पाठा के कमरिया का, कहते कोई अर्थ ना होया क्योंकि सारे का सारा फिर अपवित्र हो गया, मैला हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक कुत्ता आबड़िया है, लोभ है कुत्ता। तो जिसके अंदर लोभ है वो इंसान पवित्र नहीं, जिसके अंदर लोभ कुत्ता है समझ लो बाथरूम च इंसान नहीं नहा रहा, एक कुत्ता नहा रहा है। यही गल हुई ना, जिस इंसान के अंदर ग्रीड नाम का एक कुत्ता है समझ लो उसकी रसोई च इंसान बैठ के नहीं खा रहा, एक फिर कुत्ता बैठ के खा रहा, चोट बड़ी लगती है। सो लोभ ग्रीड लालच इतनी बुरी चीज है, कहते इन्ह चीजा ने तेरे गुण गाल दते। अगे चलिए, कहते हैं कापड़ पहरे भोग भोग, कपड़े तू कमाल कमाल दे वस्त्र पहनता है, अत्यंत किस्म दे तू जो भोग भोगदा है, आचार करे शोभा मह लोग, इसका मतलब है कि तू सोशलाइज भी करता है, दुनियादारी भी रखता है, अते इस तरह दुनियादारी रखता है कि खूब अच्छी तरह मैनरिज्म दे नाल, मैनर्स दे नाल तू लोकां दे सामने अपीर होना है, जिस करके तेरी शोभा भी हुंदी है, सोफिस्टिकेशन एलीगेंस एंड मैनरिज्म इत आदि दे नाल तू अपने आप नूं बहुत जो है सिविलाइज्ड समझदा है, आचार करें शोभा में लोग, अते लोगां दे विच तू शोभा भी खटना है कि तू बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड है, रिफाइन है, सोफिस्टिकेटेड है। पर कहते हैं आचार करे शोभा में लोग, चोआ चंदन बहुत विस्तार, कहते बहुत खूबसूरत परफ्यूम सेंट्स चोआ चंदन इत्याद ला के तू अपने आप नू बहुत सुगंधित भी रखना है, लेकिन कहते हैं संगी खोटा क्रोध चंडाल, कहते तेरे अंदर एक चंडाल रहिंदा है, संगी तेरा संगी है, तेरा साथी है एक चंडाल, वो चंडाल कौन है, क्रोध। कहते सुंदर वस्त्र पहनन दा, सुगंधियां लगान दा, अते सोफिस्टिकेशन दा, मैनरिज्म दा अर्थ की होया जे तेरे अंदर ते एक चंडाल रहिंदा है जिसका नाम है क्रोध, उसने तेरे सारे ए बारले शुभ गुण जो हैं वो चंडाल ने। तो देखने भावें इंसान बहुत खूबसूरत कपड़ियां दे विच लपेटिया होवे, उसनू बहुत ही अच्छी लैंग्वेज बोलनी आंदी होवे, बहुत ही मैनरिज्म होवे, पर एक ही पता इन रियलिटी चो चंडाल है क्योंकि उदे अंदर क्रोध बहुत है। ये तो उदों ही पता लगना ना जदों उसका क्रोध सामने आना है, जदों उसका क्रोध प्रगट होया उदों समझ लो ए पॉलिश नहीं है, रिफाइन नहीं है, सिविलाइज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ए ते चंडाल है चंडाल। अगली लाइन, अवर जोन तेरी पनिहारी, सारिया जोना नू तू बड़े अच्छे ढंग दे नाल अपने काबूज कर सकते हैं, हाथियां नू शेरां नू सप्पां नू जो इंसान उन्हां तो खेड़ा खिडांदे हन नचांदे हन। इस धरती में तेरी सिकदारी, इस धरती दे विच तेरी सरदारी चलदी है, इत्थों दी सारी वेल्थ जो है वो तू अपने कब्जे च कर सकदा है, कीती पई है ना, ऑयल डायमंड्स गोल्ड सिल्वर इत्याद जो भी वेल्थ है इस प्लैनेट दी वो अज इंसान दे हथ दे विच है। इस धरती में तेरी सिकदारी, सोयना
रूपा तुझ पैदाम, कहिंदे ऐ सोना ते रुपया ए सब कुछ तेरे पास है, लेकिन इतना कुछ, इतनी कैपेसिटी, इतना कैपेबल होने दे बावजूद भी सब विद खोई। सोना रूपा तुझ पैदाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जड़ी बुरी दृष्टि है, बुरी निगाह है, वासना वाली निगाह है, वासना वाला मन है, काम वाली जो सोच है, हर वेले काम ही काम सोचते हैं। काम ते पशुआं दे विच भी है, पर हर वेले तो नहीं सोचते। काम ते पशुआं दे विच भी है, पर वो काम दे मैगजीन तो नहीं देखते। काम ते सारी कायनात दे विच है, फुलां दे विच भी है, पर वो उस दी पिक्चरां तो नहीं बनाते। पर अज दी साडी सारी बिजनेस इंडस्ट्री जितनी देर तक काम नू विच इन्वॉल्व ना किया जाए उतनी देर तक वो चलती नहीं है। कहिंदे ते सारे गुण होने के बावजूद कहिंदे सील बिगाड़ो तेरा काम। कहिंदे सील ने तेरा सारा ही काम बिगाड़ दिता है, तेरे सारे गुण गाल दिते हैं, तेरे अंदर पवित्रता नहीं है, तेरे अंदर का पता नहीं है उस दियां इंटेंशंस की हैं। तू हर वेले कैच देखता है। आखिर दे विच एथों तक महाराज जी ने बयान किया है कि इस तरह असी अपनी इस सुंदर काया नू जो मंदिर सी, दुर्लभ सी, रब की कामणी सी, सरोवर सी, कहिंदे हन असी उसनू लोभ दे नाल, हंकार दे नाल, क्रोध चंडाल दे नाल, अते कामी सुभा दे नाल, कहिंदे हन असी उसनू तबाह कर लिया, तबाह कर लिया। बाबा जी असी ते तबाह कर लिया है, हुण इसनू ठीक करन दा भी कोई ढंग दसो। ओ कहिंदे एक ही है। अखीर उसका जवाब दिंदे हन, कहिंदे हन कहो नानक सफल ओ काया, जांको दृष्ट मैया हर राय, सा बंदी ते लई छड़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। साधु दी संगत जिसनू हो गई, उस साधु ने क्योंकि अपनी काया नू साध्या है, इसनू सही कर लिया है, इसनू हील कर लिया है, इस दे अंदरले तमाम वो अवगुण उसने तब्दील कर लिए हैं, उस दी संगत तुहानू जीना सिखाएगी। साध संग मिल हर रस पाया, साधु दी संगत दे विच मिलके कहिंदे तुसी अपने जीवन दे विचों एक गलत रस छोड़ोगे अते वाहिगुरु दा रस जदों अपने अंदर पाओगे, वाहिगुरु दे रस ने इस काया नू, गली हुई काया नू हील करना शुरू कर देना है। साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया, कहिंदे ओही काया जड़ी है दोबारा सफली हुंदी है जिसनू साधु दी संगत प्राप्त हो जाए। तो अज दा कीर्तन इत्थे समाप्त है, क्योंकि समा समाप्त है। आप जी ने हुण तक दे जो कीर्तना दे विच विचार सुनी है, शरीर दे संबंध दे विच, उस दे विच दोने पहलू आप जी दे सामने रखे हैं। एक पहलू तो जो इसकी असलियत है, दुर्लभ है, मंदिर है, सरोवर है, रब की कामणी है। पर दूसरा पहलू, अगर असी अपने अंदर आ तमाम जो अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, हंकार इत्याद रखते हाँ, तो फिर इस काया नू महाराज जी कहते हैं, कहते हैं हर बिसरत तेरे गुण गलिया, फिर तेरे सारे गुण गल गए हैं, और गली हुई काया, तमाम काया गलियां पईयां हैं। इसे करके एक दूसरे तो किसी नू कोई खास खुशी या आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। गले हुए तो किसी नू की कुछ मिल सकता है, की आनंद प्राप्त हो सकता है। भूल चुक की खिमा अपनी काया नू साधु की संगत के द्वारा हरी रस की दवाई पा के इसनू हील करने की कोशिश करो। वाहेगुरु जी।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आ

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसी ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिखे, नाम बिना नर कहीं न लिखे। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमरै कैसे राजमंडित।

तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नर के जाए। राज मिलख सिकदारियां धन जो बन बिस्थार,

बहुत बाखशी लोगों की जिंदगी दे विच ही हुंदा है। असी अपनी रोज की जिंदगी सवेरे उठन तो जो साड़ी अख खुलती है उस तो लैके रात में जो असी बिस्तर दे विच चले

नींद दे विच प्रवेश करने तो पहला हर रोज साड़ी जिंदगी दे विच जितने सानू एक्सपीरियंसेस होंदे हैं वो तकरीबन तकरीबन हरेक मनुख दे मोर ओ लेस

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना चुकी क्या है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्ह शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखने लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किसके

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। भाव उन्होंने कहन का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

प्यासा जो दिसे सो आश निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हों के चित उदास हैं, पाप जिन्हों के चित इन तमाम दुनिया के झमेलिया तो उच्चे उठ के कुछ होर लभते हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन के विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का पाप जदों इन चीजों चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनने च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे हन

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शह नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि ऐ इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित कदे अजिही चीज में नहीं लगता जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन चीजा नूं लगता रहना है जिहड़ियां ने बिन सी जाना है। तो सतसंगत जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नू कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया दे खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर इह देखणा है कि साडी रुचि बदली है जां नहीं बदली। असी अपने आप ते सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म दी साडी रुचि है, ते जिस किस्म की रुचि होंदी है उसे किस्म का इंसान होंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो। कहंदे हन

और मत सुन भजब दूना खाए खसमे करे बराबरी फिरकार नर पाए वजगो आए अगला मोहे मोह पाना खाए जचा जचा खामना तुझके साबास नानक हुकुम न चाले।

जोबन के जानवां के कालम के कालवां के सतरन के सूलवां के मित्रन के प्राणवां के सतरन के सूलवां के मित्रन के प्राणवां।

भाई जोगा सिंह करना आवाज पई सच पौड़ी तू पैसा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखला पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा सिंह फिर आंदा फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना

गया याद है तेरी सूरत सारी ओए कन्या वाले दिया पिता आँख है तेरी सूरत सारी एक

0: क्योंकि यार रो ही जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हाँ मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती। रो रो के हरा सुंदर जोगिया की कही मैं महाराज मैं भूल गया। हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आस के पास हजूर कहने लगे बख्तिया कुछ भाई जी क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए प्यार न आखो धन श्री गुरु गोविंद जी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें फिर नहीं देखना है मैरी जगह है जा चंगी है गंदी मंदी था सूरी रोशनी देता है गुरु की मेर हर थान से जाती अज थोड़े उत्ते भी पता है गुरु थानू भी दाता मिली जोगा वक्त आ गया पर भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया अदूर कहने लगे बार कद महाराज रेसवा दे चवारे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live for Bani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा साध संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारयां नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए, अपना बोले आप सुने।

கஜா சுட்டியை சுட்டி பார்க்க சொல்ல तो गुरु का हुक्म नहीं मनिया है तेरी को क्योंकि हुक्म हुक्म मालिक दी बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना वो रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसेगा ना तो सामने कोठी विच बंद भी कर रहे हैं मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सिद्धिया उठिया तुरन लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्धू शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे को कोठी बंद कर बुद्धू शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्धू शाह ने कहा नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रखा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रखा करेगा बुद्धू शाह एवे तो गन्ना बुद्धू शाह दुरु गन्ना सिख धर्म बिगाड़ बच करके मुश्किल नाल उठाया उसू और मूह च पानी पाके कहता सतगुरे की किया मैंने उधर कैद पता जे मेरा बाल बच्चा सब रुक के मर्जी कौन खिलाती जा बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचने लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरना अब कुछ नहीं लगा भुख बड़ी राज होंगे भुख बड़ी पर्वत है फरीद ने क्या मौतों को पूरी इंसान कई बार बड़िया बड़िया गलतियां कर बाणी की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब कुआर जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने दर्द साथ पानी छकन लग गया नौ महीने बीत समय नौ बीत जा समय का पता ही नहीं ना पलों दिया घड़िया घड़िया ने सकें चिंता ने मिनटा ने घंटे घंटिया ने पैर पैर ने दिन दिन ने हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल भी आए पल पल करके के आयु बीती पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जमन दिन दे पैर पैर के घड़िया अगर कहना आव घटे पंछी नौ महीने लै भाई सज्जा तेरे पौ पन मोकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया तू कोई आसरा नहीं किड़े पासे जाना बुद्धू शाह ने कहा जी मेरे को पुछता है तो गुरु को गुरु को बुद्धू शाह आओ तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाना लुकी बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं भी जाना सैयद गुरु शाह ने कहा तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डाव पानी चरण भी हुई मच्छी को सागर का अंत नहीं तू डरिया
ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ।

મચ્છી પાણી તો બિછડી નહીં તે જીવન ગુરુ કા સિખ જિસ વેલે ગુરુ ને હુકમ ચ રહેતા હૈ તો બખ્શિશ હી સબસે ચાહે જિસ વેલે મનમત વિચ આ જાતા હૈ તેરે દા કી આનંદ હૈ આપણે પાણી જો ચલે પાઈ સો બિછડે જો મચ્છી કી જાણે સાગર કે દમ પંછી કી જાણે આકાશ કેડા વડા પાઈ સજાસ કી જાણે ગુરુ કેડા વડા હૈ મહેમાન જાણે વડે વડ્યો વડા પાસ તેરા ભાઈ સજ્જા ચલા જા ગુરુ કોણ જે વિચાર બનાયા હૈ તે ચિઠ્ઠી ભી મેરી લઈ જાય જા કે ગુરુ નું દે કે અરદાસ કરી કદે મેં પાપી તે બખ્શિશ કરે ગુરુ મેનુ ભી દર્શના દીતા ભાઈ સજ્જે ને કહ્યા ઠીક હૈ ગુરુ સાહેબ અગે ગુરુ ની ચિઠ્ઠી તેરે કોલ લે આયા હા તે તો 9 મહિને ધક દીતા હૈ તે તેરી પત્રકા લે કે ગુરુ કોલ ચલા ગયા ગુરુ 18 મહિને ધક દેવેગા ઉહોને કી કર મેં નહીં કરાં ચંગા ભી તેરી પર ચલો મન્ના આપણે પિંડ ચલતે શહેર કોઈ બચી ગયા હોય તો ભાઈ સજ્જા આપણે પિંડ પડતે આયા કી વેખ્યા જિથે કખણ ની કુલી સી ઉથે આલી શાન મકાન બન્યા બિર બિર પ્યા તક જે સુદામે ને તક્યા સુદામે ઉતે ભી એ સમાયા ભગવાન કૃષ્ણ તે સુદામે દોવે સુધી પર કોણ પણ દે વિદ્યા પણ એક દિન સમીપર લખી દી ઘરવાળી ને કે બચ્યો જી માં જી ઘર ભી લકડા કોઈ નહીં લકડા લે આવ જંગલ વિચ દોવે તુર પે સમીપર લખી દી ઘરવાળી ને સોચ્યા બચ્ચે હન જલ્દી ભી જા રહે હન ભૂખ લગેગી સુદામે આ ગલ સુણ કોણ લે થોડે જે છોલે રહે ચણે રહે પોટલી વિચ બંધ દીતે જિસ ને ડાંડી ભૂખ લગે એ ખા કે મેં પાણી ના ઘૂંટ પી લે લકડા કટીયા પંડા બનિયા સિર ભી ચુકણ લગે નિરંકાર ની નેત મારી ડાંડી મારી રાત પે ભગવાન કૃષ્ણ ને કે સ્વામી હું કિદા કરીએ ઘર તો પહોંચ નહીં સકદ જંગલ તા મોકા હૈ સુદામે ને કહ્યા મહારાજ કોઈ આ દ્રત હૈ બડા વડા એને ઉપર ચાર ચલ રહે રાત ઇસી બિતાઉને હમ ફિર હોવેગા ફિર તક એક દાણ દે ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ જી બેઠ ગયા દૂજે ઉપર સુદામે ભૂખ લગી સુદામે ને ઓ છોલે વાળી પોટલી કઢી સુદામા સોચણ લગા મને જિસ તરહ મેનુ ભૂખ લગી હૈ કૃષ્ણ નું ભી લગી હોણી તે છોલે છોડે કૃષ્ણ નું તો પતા નહીં તો ક્યોં ના આપ ભી છક લઈએ ભૂખ બડી જાલમ થી તો સુદામે ને કી કીતા છોલિયા વાળી પોટલી ખોલી તે એક ફક્કા મારે ત્યારે સાસ સંગત જિસ વેલે છોલે દંદા તલે આયે તે સુદામે ને જિથે અવાજ આવી રાત દા સમા જંગલ દા મૌકા ટિકવી રાત તો દૂજે ડાણ ઉતે બેઠે ભગવાન કૃષ્ણ ને કહ્યા સુદામે કુછ ખાંદા પે સુદામે ને છેતી છેત મારા ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਦਾਮੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਵਾਦਾਈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿਣ
लगे भी स्वामी हम खा रहे हैं। महाराज तो मुझे तो पता है इतने पता कोई मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास न कर भगवान जी विजु कर कोई समय में भाव प्यारी साल संगत किसी ने सुनाने में तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कह लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज पी आई है दंदा की तो स्वामी ने कहा महाराज तुम बड़े खोए तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर तो ठंड लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तुम्हें कहने बुरी कमरिया तो उस वेले भगवान पिछले ने बचन कर दिता जाओ दलिद्रिया दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जमीन जाओ दलिद्रिया तो पित्र प्रोह कीता है क्योंकि वन के खाना बंदगी विखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जरा खो के मैं खाता है उसका गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा हो संदीपा जी की को पढ़ के विदय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी ने मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारवाड़ी सुशीला निके निके बच्चे खान कुछ भी दिलता है कि सुशीला ने किया सामी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामी ने किया था पागल भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पर मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है उन्हें को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनामी ने कि अपना गांव वाली घर तक तेरी ठीक है पर मित्र को मुझे शर्म यात्री है शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी निकले पित्र सुदामा दाल दी पित्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल दी बाल सिखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें को मुलाकात होगी किस तरह उन्हें को पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जाना है जी मैं भगवान को मिल चल पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबा को हम होंगे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाइए भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र नु मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहु भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवर्ता रहे इतने राजे महाराजे आके खड़ोदे कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रो के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीच ला के थके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ

भगवान ने अपने तखत को चार बना तो इच्छा आ गए एक कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुदामा मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी पचे हैं पहुंचे जिसे सुदामा खिलौते हैं जाके की तर दूरों देख अयोध्या जी ने दूरों देख दंडौत कर रणौता कर रणौत जान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक नहीं एक है दंडौत दंडौत हो जाए सारा श्री लम्मा पर पर्वत पर भी दंडौत बंधन अनुभव अखबार कितने कितने मुझे प्रेम यानी सार सिंह जो गुरु हो गया थे दंडौत कर सारा शरीर पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमन साथ भगवान कृष्ण जी ने सुदामे देखे जाके पहले दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं ना

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.